0: Tuesdays and Wednesdays just got better with Pizza Hut. Get a large pan pizza from just $10 on the 16th, 17th, 23rd and 24th of June. Choose from flavors like Very Beefy, Chick Ham and Shroom, or Barbecue Chunky Chick. Or spice things up with a large Otta Laksa pizza for an extra $3, limited to 2 per order. Valid for self-collection only. Order now on the Pizza Hut website or app. TNC Supply. Pizza Hut. Feed good times.
1: कमाते कोटी में कमाती है, हमारे बेटा है, पोती है और मैं हूँ। बेटी का अभी शादी कर दिया, तीन जने हैं परिवार में। महीना का 12,000 है। हमारे पोती वो सब्जी बेचती है और साइकिल भी बनाती है, देखो मिल जाते हैं। और उसको तो इतना नहीं है, बहुत सारे साइकिल आए जाते नहीं, एक दो को भी आ जाते हैं।
2: Salmati's family now survives on 2 meals a day.
1: मैंने बंद कर दिया, सिलेंडर बंद कर दिया, लकड़ियां से खाना बनती है। इतना मुसीबत कुछ कहीं ना जाए, बहुत मुसीबत है। सिलेंडर भूखे रह जाओ, इतना परेशान है सिलेंडर के लिए, कुछ कहीं ना जाए, बहुत दुखी है।
3: Half of average Indian household spends half of its budget on food, close to half, 47-48%. So if food prices rise by even a little bit, the squeeze will be felt by households. They'll cut back. You can cut back on food only so much. They'll cut back on other expenses, right? Health expenses, education expenses, etc. So if the war persists, it can have long-term effects that would be difficult to reverse on health, nutrition, and other human welfare markers.
2: We've seen how the Iran war is affecting farms and food crops. But out at sea, fishermen are facing just as much pressure.